0: नमस्ते, मेरा नाम सानवी है और मैं दिल्ली, इंडिया में रहती हूँ। बॉर्न बे कम्युनिटी रेडियो 95.9 और 98.1 FM सुना रहा है आपको पूरी दुनिया सिर्फ www.vobb.org पे।
1: थैंक यू सो मच। अ लिटिल सॉन्ग दैट वी रिकॉर्डेड बैक इन अ लाइव एल्बम आई डिड नॉट लॉन्ग अगो, इट गोस समथिंग लाइक दिस।